कार्यक्रम समर्पण प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुमधुर रसमय भजन का साथमा अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुमिरन। प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। अध्यात्म ज्योति को यो प्रस्तुति का प्रायोजक शुद्धता को सुनौलो परंपरा जय माता दी गोल पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड। आफ्नो उत्पादन वा सेवाको विज्ञापन यस लोकप्रिय प्रसारण संस्था एफएम अध्यात्म ज्योति मार्फत गर्न चाहनुहुन्छ? सम्पर्कको लागि मोबाइल नम्बर 98 41 28 98 20। प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz। प्रत्येक दिन साँझ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुमधुर भजनहरूको सन्ध्या कार्यक्रम भक्ति सन्ध्या सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

एफएम अध्यात्म ज्योति को अब को प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात। नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन कार्यक्रम शुभ प्रभात मा म सभिका तिवारी अब 8 बजेसम्म मधुर भजनहरूका साथमा यहाँहरूसँग रहनेछु।

0: गोल्ड पैलेस, सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज, मलाई ट्रैक शूट चाहिए,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनी सूट,
4: वाओ,
5: अनि मलाई

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: ओल्ड प्यालेस, शुक्लपथ न्यू रोड काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 43 736।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन,
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित, पसिना सोच्ने हलुका टिकाऊ र मुलायम इनरवेयर,
1: जेन्ट्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर,
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

0: ಮಹಾವೀರ್ ಚುಚ್ಚೆಪಾಟಿ.
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ.

0: अभिन अपने सुनतानी रउवा लोगिन के अपन रेडियो स्टेशन एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ट्ज
1: अभिन अपने सुनत पानी रउवा लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी

वाइफ से हमके मिले ना देला, गुरु बना के बना लिया चेला, हमरा के राम जी बचावे।

नया विला अजबे ससुर मिलल बा हमके गजबे पाठ पढ़ावेला ईश्वरवा सॉरी ससुर हकी दरवान हमरा न कुछ समझ आवे हमके हमरे मेहरारू से मिले में ही कथक डांस करावेला।

0: सॉरी सॉरी
1: हम तो हर इतना ख्याल करी और तू अपने ससुर से भेद करे एकदम बाप पे गैल बाड़ी जौने थाली में खाए उहे में छेद करे
2: देखी बाप मत पखानी अल्लाह तो ठीक ना पड़ी

0: एड्रेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: मन शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: अभिन अपने सुनतानी रउवा लोगिन के अपन रेडियो स्टेशन FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज।
3: अभिन अपने सुनत पानी रउवा लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी।

0: आला कृष्ण ज्वेलर्स विशाल बजार पसल नंबर 13 न्यू रोड काठमांडू राधा कृष्ण ज्वेलर्स रोजाई के सदैव
1: FM AJ 104.8 MHz

0: Dance Weekend Classic Radio Show.
1: वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप, और आज का ये एपिसोड यश चोपड़ा साहब की जिंदगी से जुड़ा है। यश चोपड़ा साहब तो इंजीनियर बनने वाले थे, पासपोर्ट भी बनवा लिया था, लंदन जाने वाले थे, उसके बाद कैसे ये फिल्मों में आए और क्यों इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ी, ये भी बड़ी अनोखी कहानी है जो आज आपके साथ बांटी जाएगी। और साथ ही यश चोपड़ा साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ बड़े ही अनोखे किस्से भी आपके साथ बांटूंगा जरूर। लेकिन उससे पहले चांदनी फिल्म का ये गाना मैं चाहता हूँ कि हम सुने सिर्फ वीकेंड क्लासिक पर।

0: गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप और यश चोपड़ा साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहतरीन किस्से और इन्हीं की फिल्मों के कुछ बड़े ही जबरदस्त गाने आप सुन रहे हैं। तो जरा ये जाने कि यश चोपड़ा साहब तो इंजीनियर बनने वाले थे और इसके बावजूद ये कैसे बने फिल्मों के जबरदस्त डायरेक्टर। देखिए हुआ यूं कि इनके परिवार ने सोचा कि भाई यश जो है घर में सबसे छोटा है, क्यों ना
1: जबरदस्त डायरेक्टर।
0: देखिए हुआ यूं कि इनके परिवार ने सोचा कि भाई यश इनके पासपोर्ट बनाने की तैयारियां शुरू हुई और ये बंबई आ गए जलंधर में जलंधर जाए इंजीनियर भाई बीआर चोपड़ा इनके पहले ही अपना नाम कमा बनाने की तैयारियां शुरू हुई और ये बंबई आ गए जलंधर में।
1: तो यश जी ने देखा
0: इनके बड़े भाई बीआर चोपड़ा
1: बड़ा
0: पहले ही अपना नाम कमा चुके थे,
1: बड़े
0: अच्छा काम कर रहे थे।
1: तो यश जी ने देखा कि भाई ये काम
0: मुझे अपना असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेते,
1: तो क्यों ना बड़े भाई से।
0: तो यश जी ने कहा भाई ये तुम चोपड़ा साहब से इन्होंने बात
1: की, जाओ कि भाई मैं महबूब खान से बात करता हूं,
0: मुझे अपना असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेते
1: तुम उनके असिस्टेंट।
0: यश जी ने कहा भाई ये तो मुमकिन नहीं है,
1: इनकी जाओ
0: आईएस जौहर साहब का नाम बात करता हूं
1: राज, पर आईएस जौहर साहब के काम करने का तरीका जरा
0: यश जी को पसंद
1: नहीं है, पर इनकी किस्मत में आईएस जौहर साहब का नाम
0: भी आप अपना ही रखते
1: हैं। आईएस जौहर साहब के काम करने का तरीका जरा यश जी को पसंद नहीं है,
0: इंजीनियर तो नहीं,
1: उन्होंने अपने बड़े भाई साहब बीआर चोपड़ा साहब
0: भी आप अपना ही असिस्टेंट बना लें
1: और मुझे अपने साथ काम सीखने दें
0: और मन लगा काम करो
1: तो नहीं बन पाऊंगा।
0: ईश्वर ने चाह
1: डायरेक्टर भी बनोगे
0: तुम मेरे,
1: और यश जी ने उसी दिन
0: तो बन जाओ
1: ये बात,
0: और मन लगा काम करो
1: ये मन लगा
0: ईश्वर ने चाह
1: और तुम डायरेक्टर भी बनोगे,
0: और यश जी ने उसी दिन
1: ये बने
0: ये फिल्म में डायरेक्टर
1: काट लेकिन
0: मन लगा काम करूंगा
1: और गरीब
0: उतार चढ़ाव रहे
1: कुछ हीरोइन से
0: इनके साथ ये बने
1: शायरी बांटा करती थी
0: लेकिन
1: कैसे
0: यश जी
1: शायर की वजह से ही
0: वो गरीब एक फिल्म बनाई
1: ये बड़ी
0: हीरोइन के साथ
1: शायरी बांटा करती थी
0: और कैसे
1: जबरदस्त
0: शायर की वजह से ही इन्होंने फिल्म भी बनाई
1: ये बड़ी
0: अनोखी कहानी में आ जाओ
1: पहले
0: आनंद बड़ा ही।

इंडियन क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप और यश चोपड़ा साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहतरीन किस्से आप सुन रहे हैं और साथ ही यश जी की फिल्मों के बड़े ही जबरदस्त गाने। देखिए साहब, एक मकाम यश जी की जिंदगी में ऐसा आया कि इन्हें आनंद बख्शी साहब को इनकार करना पड़ा। बात दरअसल यूं रही कि बी आर चोपड़ा साहब रहे कि यश जी, इन दोनों ने ही सोच लिया था कि भाई साहिर लुधियानवी से बड़ा कोई गीतकार है नहीं, इनके ही लिखे गीत जो हैं इनकी फिल्मों में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आनंद बख्शी साहब ने कहा कि भाई यश जी, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी फिल्मों में गाने लिखूँ, पर यश चोपड़ा साहब ने मना कर दिया। कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि मैं तो साहिर से ही गाने लिखवाता हूँ और कभी भविष्य में ऐसा मौका आया तो मैं आपके साथ भी काम करूंगा, लेकिन जब तक साहिर साहब हैं उन्हीं के साथ काम करूंगा। और साहिर साहब के लिखी एक नज्म से इतने मुतासिर हुए कि इन्होंने सोच लिया कि अब फिल्म बनाई जाएगी तो इस नज्म पर ही आधारित बनाई जाएगी। नज्म थी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और बस साहब साहिर साहब की ही इस नज्म पे इन्होंने फिल्म बनाई। कभी कभी संगीत दिया खयाम साहब ने और आवाज दी मुकेश जी ने। देखिए साहब, उस जमाने में सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ये उसूलों के बड़े पक्के थे, ठान लिया कि साहिर के साथ काम करेंगे तो साहिर के साथ ही काम किया। अब साहिर की जादूगरी सुनते हैं इस फिल्म से, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक लम्हा ऐसा भी आया कि एक बहुत ही बड़ा स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, जो गाने नहीं लिखना चाहता था, यश चोपड़ा साहब ने जरा जबरदस्ती की और कहा कि भाई गाने तो लिखने पड़ेंगे, और बना दिया इन्हें एक महान गीतकार। कौन है वो गीतकार और कौन सा है वो गाना, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

और वीकेंड क्लासिक पर गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। और देखिए साहब, यश चोपड़ा साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ बड़ी अनोखी कहानियां मैं आपके साथ बांट रहा हूं। कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था कि एक बड़ा ही जबरदस्त स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, जो गाने नहीं लिखना चाहता था, यश जी के कहने पर वो गाने भी लिखने लगा। मैं देखिए हुआ यूं, ये स्क्रिप्ट राइटर जो रहे ये एक जोड़ीदार थे, मतलब सलीम जावेद। सलीम खान साहब ने तो गाने नहीं लिखे, पर जावेद अख्तर साहब ने गाने लिखे। इन दोनों ने मिलकर एंग्री यंग मैन की इमेज बनाई थी, लेकिन जब ये टूटे तो एंग्री यंग मैन को ज़रा रोमांटिक मैन भी बना दिया। हाँ, जावेद अख्तर साहब दरअसल सोचते थे कि भाई गाने नहीं लिखूंगा, ये शायरी जो है वो मेरे निजी जीवन से जुड़ी हुई है, मैं इसे कैसे फिल्मों में ला सकता हूँ। पर यश जी ने कहा कि भाई जावेद साहब, आपको गाना तो लिखना पड़ेगा। गाना लिखा फिल्म सिलसिला के लिए। ये जावेद अख्तर साहब का लिखा पहला गाना था जो फिल्मों में आया। ये बड़ा ही अनोखा गाना है, इसमें ख्वाब भी हैं और गुल भी हैं। आज समझ गए फिल्म सिलसिला के इस गाने के मुतालिक। जी हाँ, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। ज़रा से सुनते हैं और उसके बाद बताऊँगा कि यश चोपड़ा साहब सुनील दत्त बन गए थे और महेंद्र कपूर किशोर कुमार। भाई ऐसे क्या हालात थे कि यश जी को सुनील दत्त बनना पड़ा और महेंद्र कपूर साहब को किशोर कुमार। ये भी बड़ी दिलचस्प दास्तां है, बहुत जल्द सुनाऊंगा सिर्फ वीकेंड क्लासिक पर।

0: ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब, उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता है।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम भक्ति संध्या। नमस्कार, स्वागत, अभिवादन कार्यक्रम

भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक है मटकी फोड़ना। गोपियां भगवान कृष्ण की बड़ी ऋणी हैं। जिस गोपी को ज्ञान नहीं होता है वो तो जाकर मां यशोदा से शिकायत करती है कि देखो तुम्हारे पुत्र ने हमें तंग किया और हमारी मटकी फोड़ दी। परंतु उन गोपियों में एक गोपी ऐसी है जो तत्वज्ञानी है। वो सोचती है कि ये तो बाल गोपाल की बाल लीला है, नंदलाला ने मटकी फोड़ी है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। वो सोचती है और समझ जाती है और फिर कहती है, पाप की मटकी तूने फोड़ी।

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि।

भाई सूरज जब तक अस्त नहीं हो तो चंद्रमा निकले कैसे, और निकले नहीं तो दर्शन करे कैसे। और वहां लिखा है मास दिवस भा दिवस पुनि मर्मन जाना कोई, एक महीने का दिन बना दिया सूरज ने, आगे जाते ही नहीं। अपने रथ के सहित रवि सूरज रुक गए तो निशा कवन विधि होए, टकटकी लगा के देख रहे। चंद्रमा वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रहे। राम जी ने पल्ला से ही कॉन्टेक्ट किया और चंद्रमा से बोले काय करो ते हो, क्या तकलीफ है, सब लोग हंस रहे हैं, बाहर नगाड़े बजने की तैयारी हो रही है, हैं अबीर गुलाल लेके लोग बैठे पीले कपड़े दो दो घंटे से पहनकर खड़े, तुम्हें क्या तकलीफ हो गई, काय करो ते हो। चंद्रमा बोले जले पर नमक और डाल रहे, एक तो आपने सूर्य वंश में अवतार लिया वो भी दिन के 12 बजे लिया, बताओ रो नहीं तो क्या हंसू, सूर्य आगे ही नहीं जाता तो मैं दर्शन कैसे करूं, काय को कष्ट पाते हो जी, इस बार सूर्य वंश में आए हैं, अगली बार आएंगे तो चंद्र वंश में आ जाएंगे। हाँ और सुनो, इस बार दिन में 12 बजे आए हैं, अगली बार रात में 12 बजे आ जाएंगे। इस बार सूरज ने एक महीने का दिन बनाया है, अगली बार तुम 6 महीना की रात बना देना, क्योंकि दिन का स्वामी दिनेश है सूरज, रात्रि का स्वामी राकेश है चंद्रमा। अब तो खुश हो, अजी कब आएगा द्वापर, कब बनेंगे कृष्ण, कब होगा अवतार, तब तक तो मैं रोते रोते ही मर लूंगा। राम अवतार में आप सबको सुख देते हैं, रामचरित्र सबको आनंद देता है, मुझे क्या मिला। भगवान ने कहा सुनो, राम अवतार में तो जो मेरा नाम लेगा ना जी, मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम जरूर लेगा, इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या है, राम, पहले ही नाम कर दिया।

0: तीनों माताओं के यहाँ चार पुत्र के रूप में चतुर्व्यूह अवतार में प्रभु पधारे। अयोध्या में उत्सव मना, बहुत खुशियाँ सबने मनाई और आज बहुत प्रसन्नता बहुत हर्ष की बात है कि हमारे मध्य पधारे हैं राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख। उसमें जो इतना उत्साह वर्धन हुआ उसके प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय आचार्य गिरिराज किशोर जी। श्री गिरिराज किशोर जी का तो जीवन ही समर्पित है राष्ट्र के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, विशेषकर हिंदुत्व के लिए। व्यास मंच से उनके प्रति अनेकानेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, प्रभु उन्हें दीर्घायुष्य प्रदान करें। और राष्ट्र की सेवा में जो उनके भाव हैं उस भाव में उत्तरोत्तर वृद्धि होवे और उनके भावों से आज का जो जनमानस है वो लाभान्वित हो और उनका और समग्र हिंदू राष्ट्र के आकांक्षी हिंदुओं का स्वप्न है वो साकार रूप लेता जा रहा है, उसमें शीघ्र सफलता मिले, ऐसी प्रभु से हमारी प्रार्थना है, ऐसी प्रभु से हमारी वंदना है। वे आज यहाँ पधारे, बहुत बहुत मंगल कामना। जय श्री कृष्ण। एक बात मैं आपसे और बोल दूं, अभी कोई उठेंगे नहीं, आज सायंकाल कथा 3 से 7 बजे तक होगी।
1: बाल कृष्ण

परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मां के चरणों में बैठकर पूज्य स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज के सान्निध्य में पधारे हुए संत जनों की पवित्र सन्निधि में भगवान सुखदेव के मुखारविंद से निश्रित भागवत कथामृत का हम लोग पान कर रहे हैं। पूरी अयोध्या आज राममय हो गई, अवध राममय है। और सुनो, एक महीना कब बीत गया किसी को पता नहीं चला, ऐसा लिखा है। मास दिवस भा दिवस पुनि मरमन जाना कोई। कहते हैं दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी निकल जाता है, और सुख की अपेक्षा शांति का समय और जल्दी निकलता है। पर शांति की भी अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी निकलता है, आनंद की भी अपेक्षा परमानंद का समय और जल्दी निकलता है, परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय तो और जल्दी निकल जाता। जी, राम जन्म के पवित्र अवसर पर श्री अयोध्या धाम में केवल सुख नहीं है, केवल शांति ही नहीं है, केवल आनंद या परमानंद ही नहीं है, यहां तो ब्रह्मानंद उमड़ पड़ा है। कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। अजी, ब्रह्मानंद उमड़ पड़ा है मेरे रघुवर के पवित्र जन्मोत्सव के अवसर पर। हमारे हृदय की अवध में तो राम का प्राकट्य होना ही चाहिए, तो ही जीवन खुशहाल हो पाएगा। योगियों के हृदय में तो वे रमण करते ही हैं, रमनते योगिनोस्मिन निति राम। योगियों के हृदय में जो रमण करे वो राम है। जी, ऐसा सुंदर जन्मोत्सव मना, एक महीना निकल गया एक दिन जैसे पता ही नहीं चला किसी को। सूर्य नारायण की गति रुक गई, वो चलना भूल गए। अच्छा, सूर्य को एक तो खुशी है, राम जन्म की दिन में 12 बजे हुए ना। हमारे ब्रज के कवि लोग कहते हैं सूरज की तीन दशा हो तो एक दिन में। सूरज की तीन अवस्था होती हैं एक ही दिन में। सवेरे वो बाल अवस्था में होते हैं और ठीक 12 बजे एकदम जवान होते हैं सूरज, हैं, और शाम को ढल जाते हैं। तो सूरज की तीन दशा हो तो एक दिन में, तो जिस समय सूरज पूरी जवानी पर रहते हैं 12 बजे तब राम जी पधारे। अच्छा, सूरज वंश में तो आए ही हैं, इसलिए सूरज को तो अपार खुशी होनी थी ना जी। उन्हें तो बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, इसलिए प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब महाराज परिस्थिति ऐसी बनी है आज यहां कि दशरथ जी ने प्रणाम किया गुरुदेव को। हम थोड़ी तुलसी बाबा की चर्चा कर लेते हैं। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास महाप्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की है पूरे समाज पर, पूरे राष्ट्र पर। भगवान राम के चरित्र को हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया सरलीकरण करके। घर घर में राम कथा गा सकते हैं, घर घर में रामायण का पाठ होता है, छोटे छोटे बाल गोपाल भी रामायण के अखंड पाठ कर लेते हैं। देखो,
गोस्वामी जी की कितनी बड़ी कृपा है, कौन वर्णन करे उसका। अब तो महाराज जब पधारे गुरुदेव के आश्रम में, बोले गुरु जी जात कर्म संस्कार और पूरा शुद्धिकरण हो चुका है, आपको जिस दिन अच्छा लगे मेरे चारों पुत्रों का नामकरण कर दें। आहा, चारों का नामकरण आप श्री के मुख से हो जाए। वशिष्ठ जी महाराज के नेत्रों में आंसुओं की धार निकल पड़ी। मैं कितना बड़ा बड़भागी हूं, प्रभु के नामकरण का अवसर मिल रहा है मुझे। लेकिन सोचने लगे, जब अजन्मा का जन्म हो सकता है तो अनामी का नाम क्यों नहीं हो सकता जी। अजन्मा जन्म लेकर आता है, बिनु पग चल ही सुन ही बिनु का काना, बिनु कर कर्म कर ही विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। लो कर लो बात। हाँ, ये सारी क्रियाएं होने के बाद भी वो सब कुछ करता है। अरे मैं नामकरण करूंगा, आनंद में भर गए महात्मा वशिष्ठ जी। और महाब्राह्मणों की मंडली पधारी, दशरथ जी ने सभी विप्रों का पूजन किया, गुरुजनों का पूजन किया, संतों का पूजन किया, और हजारों नरनारी आए हैं नामकरण सुनने के लिए। हमारे राजकुमारों का नामकरण सदगुरु देव रख रहे हैं। गोस्वामी जी ने कुछ पंक्ति कही है, मेरे संग गाइए, फिर संक्षिप्त राम कथा सुना देंगे।

आनंद का जो सिंधु है, सुख की जो राशि है, जिसके आनंद की सिंधु की एक बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है, उसको हम कहते हैं श्री राम। शंकर जी को देवताओं ने जब विष दिया था ना, सुबेर कथा थी, मैं संक्षिप्त बोल गया, तो अब शिव जी तो पी गए। ब्रह्मा बोले क्या हुआ, बोले पिला दिया। सही में बोले बिल्कुल पी गए, तोले भी नहीं छोड़ा। तो देवताओं को लगा कि गड़बड़ न हो जाए कुछ, कोई 10-5 तोले तो था नहीं, 50,000 करोड़ टन से भी ज्यादा था। हां भाई, त्रिलोकी को भस्म करने वाला जहर निकला है तो तोले दो तोले से त्रिलोकी बह जाएगी क्या? त्रैलोक्य दहनात् विषात, ऐसा लिखा है। और शंकर जी अंजलि में लेके पूरा ही पी गए। देवताओं ने कहा तब गड़बड़ जरूर होगा। आए तो देखा तो भोले बाबा आंख बंद करके बैठे। देवताओं ने पूछा बाबा आपको कोई कष्ट? बोले कोई नहीं। अरे महाराज जहर पी गए आप तो? बोले हां, ऊपर से मैंने विष पिया, अंदर मेरे राम बैठे थे, तो विष ऊपर से जब अंदर गया तो राम ने उस विष को ऐसे सहारा दिया, सो मुझे तो विष राम मिल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। पायो परम विश्राम। यदि विष को भी राम से जोड़ दिया जाए तो वो विश्राम देता है, विराम नहीं देता। बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन का विश्राम मिलता है। राम तीन हुए इस राष्ट्र में, एक है दशरथ नंदन कौशल किशोर मेरे श्री राम। राम जैसा करुणाशील कौन होगा? कभी कभी राजपुरुषों से थोड़ी भूल हो जाती है। राजपुरुष जब गलती करने लगे तो हाथ में परशु लेकर के, जिन्होंने राजपुरुषों को सही रास्ता दिखाया, वे हुए हमारे दूसरे राम श्री परशुराम भगवान। सही रास्ता दिखाने को आए थे। और तीसरे राम तो मेरे कन्हैया के बड़े भैया श्री, हो गया ना कन्फर्म? ये तीन राम हैं। मैंने कल कहा था कि तीन ही भरत हुए हैं इस राष्ट्र में, अब तीन राम हैं और तीन भरत हैं। विष्णु ही तो भरत के रूप में हैं, पालन करने का दायित्व तो जिनके हाथ में, वो भरत हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई। और देखो जाके सुमिरन ते रिपु नासा, जिसके सुमिरन से शत्रु नष्ट हो जाए उसको शत्रुघ्न बोलते हैं। किसी ने पूछा था राम का नाम शत्रुघ्न होता तो चलता, लक्ष्मण का नाम शत्रुघ्न होता तो चलता, लेकिन आपने चौथे भैया का नाम शत्रुघ्न रखा, जो शत्रुघ्न कभी लड़ता ही नहीं। रामायण में शत्रुघ्न जी का प्रणाम तो आपको मिलेगा पर निवेदन नहीं मिलेगा। शत्रुघ्न तो कभी बोलता ही नहीं, ये मौन पात्र है। भरत भैया जो बोलेंगे वही बस कन्फर्म है, अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं इनको। अब शत्रुघ्न जी जो आदमी कभी बोलता ही नहीं, वैसे अन्य शास्त्रों में एकाध जगह कहीं शत्रुघ्न जी, जैसे हमारी मथुरा नगरी जो है मधुपुरी, इसको शत्रुघ्न जी नहीं तो बसाया था। मथुरा जो है शत्रुघ्न जी नहीं तो बसाई थी, बड़ा भारी युद्ध हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन रामायण का जहां तक प्रश्न है तो शत्रुघ्न तो कभी ही लड़ते ही नहीं।
वो तो बड़े शांत स्वभाव के हैं, अब उनका नाम आपने शत्रुघ्न रख दिया। राम का नाम शत्रुघ्न क्यों नहीं रखा? राम जी ने ताड़का मारी है, मारी सुबाहु का कल्याण किया। लक्ष्मण जी ने देखो है नाक कान अलग किए उसके मौसी जी के, और क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी ने कामदेव का रूप मार दिया। काम माना जाता है मेघनाथ, उसको लक्ष्मण जी नहीं मारा। अरे उनका नाम शत्रुघ्न होता तो बात भी थी। तो कहते हैं देखो बाहर के शत्रुओं को जो मारे वो शत्रुघ्न नहीं है भैया, सच्चा शत्रुघ्न तो वो है जो अंदर के शत्रु को मारे। जब ताड़िका क्रोध कर आई, ताड़िका क्रोध का प्रतीक है, उसको राम जी ने मार दिया। क्रोध बाहर का शत्रु है, आदमी क्रोध करता है तो चेहरे का आकृति बदल जाती है, आंखों की भंगिमा बदल जाती है, नाक फड़कने लग जाती है, और जो डायबिटिक होते हैं वो लोग तो थरथर कांपने लग जाते हैं। हाँ जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको जब क्रोध आता है ना तो खिड़की के कांच तोड़ते हैं, कप प्लेट तोड़ते हैं, कुर्सी इधर से उधर फेंकते हैं, ज्यादा तोड़ने की तो ताकत नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो क्रोध भी बाहर दिखाई देता है, है? व्यक्ति जब कामाशक्त होता है तो भी उसकी मुखाकृति बदल जाती है, कामुक आदमी की भाव भंगिमाएं भी दूसरी होती हैं। पर शत्रुघ्न जी जो है इनको शत्रुघ्न क्यों कहा? बोले शत्रुघ्न इसलिए शत्रुघ्न है कि लक्ष्मण जी ने मेघनाथ मारा, बाहर का शत्रु है, काम को मारा। राम जी ने ताड़का आदि मारे, क्रोध है, ये भी बाहर के शत्रु हैं। पर शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न इसलिए है कि उन्होंने अंदर का शत्रु लोभ मारा। ये मंथरा की कमर को सीधा तो शत्रुघ्न जी ने किया था, और मंथरा तो लोभ का प्रतीक मानी जाती है। तो सच्चा शत्रुघ्न कौन है जो अंदर के लोभ को मारे? ये बड़ा खतरनाक शत्रु है। बिल्कुल सही बात है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, ज्यों ज्यों लाभ बढ़ता है त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाता है। लाभे न वर्धते लोभ, लाभ से लोभ बढ़ता जी। और शत्रुघ्न जी ने तो उस लाभ का लोभ का विनाश किया, इसलिए वो शत्रुघ्न माने जाते हैं। और ये बढ़ता कभी घटता नहीं है। वो नारद जी जा रहे थे रास्ते में तो कोई आदमी बैठा था भिखारी, भीख मांग रहा था। संत नारद तो बड़े करुणाशील हैं, उससे बोले क्यों कितने दिन से बैठते हो यहां? बोले 40 वर्ष हो गए साहब। रोज भीख मांगते हो? बोले हां जी। कितना मिल जाता है भीख में? जैसे तैसे पालन कर पाता हूं बच्चों का। नारद जी को बहुत दया आ गई, बड़ा गरीब है बेचारा, धोती फटी है, कपड़े फटे हैं, मुखमलीन है। नारद जी ने तुरंत महाराज एक पत्र लिख दिया। नारद जी तो देवर्षि हैं, देवताओं के यहां बेरोक टोक जाते हैं नारद, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अरे नारायण के यहां भी उनको पास की जरूरत नहीं पड़ती। बोलो जय श्री कृष्ण। सीधे ही जाते हैं, भगवान भी उनका आदर करते हैं जी। तो नारद जी ने एक पत्र लिख दिया और भिखारी को देखे, बोले जाओ मैंने देवताओं के वित्त मंत्री के लिए लिख दिया पत्र। देवताओं के वित्त मंत्री कौन है मालूम है? कुबेर जी महाराज, ये खजांची हैं देवताओं के कुबेर, और उसकी मालकिन है माता कात्यायनी। बोलो जय श्री कृष्ण। अन्नपूर्णा है, चाबी इनके पास में रहती है, कुबेर जितना मांगे उतना देती हैं, ले जाओ। अब कुबेर के पास में चिट्ठी लिखकर के भेज दिया। अब ये आदमी गया तो उसको जहां भी कोई रोके सो चिट्ठी दिखा दे। नारद जी का सिग्नेचर देखती, सब प्रणाम करें, बोले पधारो सा, ये फटेहाल आदमी, कमंडल भी साबत नहीं, सीधा जा रहा छाती तान के। कुबेर ने कहा कहिए। ओहो आइए आइए बैठिए। पत्र देखते ही तुरंत आसन दिया। कहिए। बोले पढ़ लीजिए, कहना क्या है? कुबेर ने पत्र लिखा तो नारद जी ने लिखा था, इस आदमी को भेज रहा हूं, इसके कमंडल में हीरे जवाहरात इतने भर दो कि इसको दो चार जन्मों तक काम आवे, एक इंच भी कमंडल में जगह खाली नहीं हो, महंगे से महंगा हीरा भर दो पूरा। ठीक है, कुबेर ने भंडार खोल दिया। लो भैया, माता जी से आज्ञा ले ली। मां ने कहा ठीक है। नारद जी ने कहा तो कौन मना करे?
अब तुम्हारा कमंडल उसने खोल दिया और भर भर करके हीरे उसमें डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। 15 दिन हो गए, नॉन स्टॉप चल रहा है, जैसे अखंड रामायण पाठ होता है ना, ऐसे अखंड चल रहा है पर कमंडल भरता ही नहीं। नारद जी ने देखा उस जगह पे जाके, बोले आजकल इधर नहीं बैठता, पूरा भर गया होगा कमंडल। फिर नारद ने सोचा, देखो तो सही, वो आदमी आजकल बंगला वंगला बनाकर रहता कहां है। आंख बंद करके देखा तो पता चला वो तो कुबेर के यहां बैठा और कमंडल भरा जा रहा है। नारद जी बोले 15 दिन हो गए कमंडल नहीं भरा। अलकापुरी आ गए, कुबेर की नगरी। जैसे प्रवेश किया तो महामंत्री मिल गए, कहिए। बोले महाराज भेजा करो तो सोच तो लिया करो, किसको भेज रहे हैं। पसीने पसीने हो गए लोग, भंडार खाली हो रहे हैं, कमंडल भरता ही नहीं। नारद जी की चिंता बढ़ी, अंदर गए, कुबेर महाराज पसीना पहुंच रहे थे। नारद जी बोले क्या हुआ। बोले 15 भंडार खाली, 16वां खुलने वाला है। हैं? और कमंडल नहीं भरता। बोले भरता ही नहीं महाराज, पैदे में नहीं आया अभी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो नारद जी को चिंता बढ़ी, उससे पूछा क्यों, क्या है तेरे कमंडल में जो भरता नहीं, मेरी बात खराब हो गई। वो बोला मेरे को क्या मालूम साहब, आपने बोला भरना, मैंने कहा खाली तो ले नहीं जाऊंगा, भर दो पूरा। नारद जी ने कहा तेरे कमंडल का जरा निरीक्षण करेंगे अपन। नारद जी ने उसका कमंडल लेके जैसी पलट करके देखा तो उसमें आदमी की खोपड़ी रखी थी और उसमें लोभ बैठा था। बोलो जय श्री कृष्ण।